0: तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता।
1: से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता।
0: तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तद।

0: पहला तत् सरोरड़ पहले नवासा पाणी पावक तन है किया
1: पंक जो मोह पग नहीं चले हम देखे ते दूबियले
0: मन एक न चेत समूढ़ मन

0: करिए
1: वरण होए हमारी आशा
0: तोर पजन की रह व्यासा
1: तुम्हें शक यमनते आऊं
0: जो वर चाह से तुम ते पाऊं
1: सेवक सिख हमारे तारिए
0: चंचल सत्र हमारे मारी है
1: आप हाथ है मुझे उबरिए
0: मरण काल का त्रास उबरिए
1: पूजो सदा हमारी पछा
0: श्री हस्त तुझो करिए रक्षा
1: राख रे मोय रखन हारे
0: साहिब संत सहाय प्यारे
1: दीन बंधु दुष्टन के हंता
0: तुम हो

0: जवं का सब लोक स्वारा
1: नमस्कार है ताहि हमारा
0: जवं का सब जग बनायो
1: देव दाज जचन उपजायो
0: आद अंत एक अवतारा
1: सही गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार तसी को हमारी
1: सकल प्रजाजन आप सवारी
0: सबकन को सिर्फ गुण सक दियो
2: सत्रन को पल मोहबत कियो
0: कट कट के अंतर की जानत
1: लेबरे की वीर पछानत
0: चिट्ठी ते कुंज अरस थुला
1: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी
1: सुख पाए साधन के सुखी
0: एक एक की पीर पछाने
1: कट के बट बट की जाने
0: जब उत्कृष्ट करा कर तारा
1: तब देह अपारा
0: जब आखिर कर्त हो कब हूँ
1: तो मैं मिल दे तब सब हूँ
0: जेते बदन

0: करिहं परजगमाता
1: ग्रंथकराभूरण सुबिराता
0: गंधबेख सकल दे कोहरता
1: दस्तदोक्यन कोचाय करता
0: सीरस्तुच्च पहिये दे आला
1: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
0: मन पांचन स्कोल पावे सोई।

0: निकट मत तिनकर के रह हो जो या की एक बार चौपाय को कहे चौपाय संवर सत्र सहस पर नीचे
1: अर्ध सहस पर तीन कह जाए भाद्रव सदी अष्टम रववारा
0: सत्यम ग्रंथ सारा
1: एज श्री चरित्र उपख्याने त्रय चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त।

0: भगवत कदोनर
1: कारपरकी कोटक विसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते
0: रव सस क्रोर जले सदोहर राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुरवास रघुबर करा सगरी पुरी स्मित चौप जो यह कथा सुने और गावे
1: धूप भात में निकल न आवे
0: बसन भगत की ए फल होई
1: आप आशा सके न कोई।

प्यारी साध संगत जी, शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगतां नूं लड़ीवार कथा गुरमत विचारां सरवण करवा रहे सन। सत्कार जो ग्यानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले पाठ साहब जी, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे हन सत्कारयोग रागी भाई सरबजीत सिंह लाडी दरबार साहब वाले अते उन्हां दा रागी जत्था। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है जो आउण वाले शुक्रवार शनिवार शाम दे दीवाना विच जो राग श्री राग अते तलंग राग दे आधार दे कीर्तन होवेगा, जिस विच भाई साहब भाई सरबजीत सिंह लाडी अते डॉक्टर अलंकार सिंह जी आप संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। सो आप संगतां ने समय सिर पहुंच के लाहा लैणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करन औने दयावे ताहे सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान करके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की है अमृत वेले तो सोहने तख्तों के प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे हैं। आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्णता परंत आप जी के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल जुग की खिमा बख्शन आपके भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना आपके भाने विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनी सेजा ते विराजमान होवो। संगतां खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जना मिले आमदा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

तेरे। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी,

न आवै कांखी एक दरसुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसाए प्रभु कै सिमरन दुख जम नसाए प्रभु कै सिमरन काल बर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टराय प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभु कै सिमरन अंध न जागै प्रभु कै सिमरन भाव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन

नमः उदारी अनग पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पापर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंध ना पर हर का नाम जपत निसुतर अनग माय रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत अगावे जे मार्गे जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याइए नान गुरमुख परमगत पाइय छूटत नहीं कोट लग बाही नाम जपत है पार पराही अनक बिघन जाए संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत भावे विश्राम हाँ मैला मल कबूना तो वह हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध गया संग जे मार के गने जाहे ना गोसा हर का नाम मुहा संग तुसा तो

सिज जाए। जय प्रसाद हर प्रसुख बसै, सुत भरात मीत बनता संघसै। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमला। जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री सुख साध बसा। दिने हस्त पाम करण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे, नान काल लियो प्रव्यापे। आदंत जो राखन हार, तिस्यो प्रीत ना करा गवार। जाकी सेवा नाम निंद पावे, दास मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर ससदा हजूरे, ठाकुर अंधा जान दूरे। जाकी टहल पावे दरगे मांद, से बिसारे मुगत अजान। सदा सदा ये भुलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्या कौडी संग रचै, सा छोड़ छूट संग मचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर मान,

मन जागो जय प्रसाद तुम प्रगट संसार तस प्रभु को मूल ना मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तुम भावे साज रे मन मेरे तू ता शिवराज।

भाव है। सा संग बसा गोचर लह साधु कै संग आचार्यो सह साधक संग बसे थान ऊंचे साधु कै संग महल बहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग बाय नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब गुल उतारे सा संग साजन मीत कुटम निस्तार साधु कै संग सो धन पावे जिस तंते सबको बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नई कशकाल दर्शन भेड़ तो होत रे हाल साधक संग कलुकत हर साधक संग नरक पर हर साधक संग इह सुला साध संग बिछरत मेला

पूर्ण प्रकृति दाता ब्रह्मज्ञानी आराध का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहाथ ब्रह्मज्ञानी का सगलकार ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्वगा तनी सलोक उरता रहे जो अंतर नाम सर मैं पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक अपर सगल नस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पर समान में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रिरुपना बिखे नेत्र साध की टहल संसंगेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप उसको मंदा गुरु प्रसाद भिखिया पर हर मन की बाशरा बनते टर इंद्री जत पंच दोखते रहत नान कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सोहो जिस सुप्रसन विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म कर तो वह निर्कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संघराचा मंथन अंतर सिमरण गोपाल सब ऊपर होवद कृपाल दृढ़ वरे नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संगमंद मिंस सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग बापा मल खोवे तुस भगवती की मातु तम हो वै भगवंत की टहल कराय नित नीत मंत्र अरवै विष्ण प्रीत अर्गे

कई गुण तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई गुण नाम रस भी बेमर भय सी जीवे कई गुण नाम गुण गावे आतमरा सुख सह समावे अपने जन को सा सा समारे नान को परमेश्वर के प्यारे सरो करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तसबले हारण जल थल मई अल सो अष्टपदी करण करावन करने जो जो तस्भावे सोई हो गन में थाप थाप नहार अंत नहीं कुछ पारा बारा हुक्मे धार अधर रहा हुक्मे अपजो हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावे मानुगत भावे प्रभावे त पाथर तरावे प्रभावे न सास ते राखे प्रभावे त हर गुण भाखे प्रभावे त पाथर उधारे आप करे आपन।

ज्योतिषभावे सुभंतियो कभू ऊज नीच मह बसा कभू सो घर खरंग हसा कभू नेंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकाश पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कभू नृत्य करे बापा।

ख सन का दुखी सदा अपवित सन का दुखी किसे का नहीं मैत सन के दुखी को डान लागे सन के दुखी को सब त्याग सन का दुखी मां अहंकारी सन का दुखी सदा बेकारी सन का दुखी जन्मै मरै सन की दुखना सुखते ठरै सन के दुखी को नाही ठाओ नान सत भावता लाए मिलाए सन का दुखी आदि बीते टूटै सन का दुखी किते काज ना पहुंचै सन के दुखी को ध्यान भरमाइए सन का दुखी उजड़ पाइय संगा दुखी अंदर दे थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किशनाहे आपन भी जापे ही खाए संगे दुखी का वरना रखन हार नानक संभावेता लय उबार संगा दुखी ए बिल लाए जल भी हूं मछली तड़ फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राजा है जो पावक इंद्र नहीं त्रापे संगा दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुवेला संगा दुखी धर्म तेरा संगा दुखी सद मिथ्या कहत किरत नंदगा तुरी भया नानक जोत सुभावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पय जाए संगे दुखी को दरगह मिले सजाए संगा दुखी सदा सहकाई है संगा दुखी ना मरे ना जीवाइय संगे दुखी की पुजे ना आसा संगा दुखी उठ चले नरासा संगा दुख ना दृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई हुए पया कीर्तना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोए सबगढ़ तिसको करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से ध्यावो साध गिरा सब कुछ भरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर गाओ न कहे बिचार जनो कृपा करे तिसापन नाम दे बड़भागी नानक

सो जन सदा आरोग ज्यो मंत्र को थामे थमन त्यों गुरु का शब्द मने समन जो पा खांडा विचार तरह प्राणी गुरु चरण लग सन तरह ज्वंतकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा जो माहो ध्यान में मार्ग पावे तिन साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की अरुचा पूर मन मुर काहे बिललाइए पुरब लिखेगा लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तसे चितार जो कुछ करे सोई सुख मान भूला गाहे फिरे अजान कौन बसताई तेरा संग लपटा रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक बल से तीकर जाहे सुखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोला दिखे संते संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुकूज लहर तरगे सोए ए बाबा बिरला बाबा रे नानक ताके सत बलहारे चरण साधके धोए धोए पियो अरब साध को अपना जियो साध की धूर करो शनान साध पर जाइये कुरबान सा सेवा पटभागे पाइये सा संघर कीर्तन गाइये अनक बिगंदे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रचा के ओढ़ गही संते दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीव अलहार भुख को देवत आधार सर्वनिधान जाकी दृष्टि माहे प्रभु लिखे का लेना पाए सबके तिस्गाव करने जोग तिस्बिन दूसर हुआ ना होगा जब जन सदा सदा दिल रहनी सब

वजन पदार्थ लहे वे दाते तू काटनहार जाके संग तरा संसार जन का सेवक सोबट भागी जन का संग एक लिबलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सरो आद सच जुगाद सच है भे सच नानक वसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणा पे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सच सुनता बुझन हार को सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत रूप हृदय जन मान्या करण कराम दिन मूल बछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान मन प्रगटाया पैदे निर्भोय बसाना सिव जात समाए समाना बस्त माहे ले बस्त गिडाई तागो भिन्ना गहना जाई

उपजी प्रीत प्रेमरा चाओ मंत्रंतर ए स्वाओ नेत्रो एक दर्श हुए मान भगसे सा चरण तोये भगत जना के मंत्र रंग बिरला गौ पावै संग एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए पर बख्शांदीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद।

समाये ऐसे हुए सो ना ही बुरा उरा कह हो कि ने कश करा आप ला कर दूता तने की आपे जाने अपने जी की आप साज तारी सब साज ओत बोध आपन संगराज ताकि गतविंद कहीं ना जाए दूसरो ऐता सो जी पाए जिसका किया सब प्रवान गुरप्रसाद नान के हो जान जो जाने।

दीनदयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय प्रगड़े गोपाल मान के माथे नानक उतरे तन के साथ है शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय समरेन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण ही सेवा की सेव आल जंजाल बिगार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक रवि खेप हमारी प्रभु की उसत करो शांत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊज पाए स्थान भवर न होवे आमन जान अर्तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद्ध नवरिद्ध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगाश

सुरु है, काल कारण है, सर्वे उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खाल खंडस है, पारते पर है, करुणा कर है, जापा जाप है, थपा थाप है, अकृता कृत है, मृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी त्रित है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है,

कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय इह सहसाय जाए जी हो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जी हो ता मैले तिनी जन्म जू है हारिया।

सतगुरु विचार रखे कर प्रगटा सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन था।

0: संग्राम रण में छुटे प्राण लक्ष्य लग्ञान ध्यान फड़ी है पाठ पुराण जन करते कारण किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथ्या
1: कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक।

0: पुता को जाके गुरमिन सूता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंध है पत गवा
1: बिड़ला वे किश्ताई ना पाई रहे बेबानी बड़ी मस्तानी अंदर।

पौड़ी दान महिंडा तलिका जमेलिता मस्तक लाई है, कूड़ा लालच छड़िए होय एक मन अलख तिहाई है, फल ते वे हो पाइये जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखे था तोड़ तिना दी पाइये, मत थोड़ी सेव कवाई है।

0: जाने ते हो वरते वेखो कौन निर्जा।
1: वस्तु अंदर वस्तु आवे दूजी होवे पास, साहिब जेती हुक्म चले कहीं बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास मोहला दूजा।
2: नाने आने दोस्ती
1: बड़ा
2: बड़ा।

0: असांख मूर्ख अंधकोर
1: असांख चोर राम कोर
0: असांख अमर कर जाए जोर
1: असांख लोटन त्याग कमाए
0: असांख पापी पाप कर जाए
1: असांख गुड़ियार गुड़े फड़ाए
0: असांख मलेश माल पाखाए
1: असांख

0: कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वरं परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वरं परम विद्धे
0: नमो सस्वर पाणे।

0: गर्भगंधन दुष्ट पंजन मुक्तदायक काम गर्भगंधन दुष्ट पंजन आदरूप सूत सर्वलायक सर्वकाय सर्वको प्रतपार
1: सर्वगंता सर्वतयन पेक
0: सर्वसास्त्र जाने के रूप रंग लेख
1: परम भेद परम जाके नेत पाक नित
0: कोट समृत पुराण शासन आवे हो चित
1: बद पाक छाद द्वार प्रसाद गुण गुण उदार में

चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य चतुर्चकर्माण्य च

0: केशवराज्य
1: केशवत्र सुख है केशवत्र भोग है
0: केशवत्र त्राण है केशवत्र प्राण है
1: केशवत्र देश है केशवत्र पेश है
0: केशवत्र मान्य स्वयं प्रधान्य
1: केशवत्र जाप्य है केशवत्र थाप्य
0: केशवत्र पाण्य है।

0: सर्वं प्राणं सर्वं कारणं
1: सर्वं कर्म सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं
0: सर्वं
1: त्राणं
0: सर्वं जगत्मं कारणं तन्मं
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: प्रसावशान्ताय प्रसाद नमो नाथस्य सदावं प्रकाशे
1: अनंत स्वरूपे अपांगं विपुत्रे
0: परमासं परमार्थे सदा सर्वसाथे
1: अनाथ स्वरूपे निर्बाध
0: अत्रपंगी तर्कामे
1: अनंगी नामे त्रपंगी तर्कामे
2: अनंगी स्वरूपे सपंगी अनुपे
0: न पुत्रे न पुत्रे

0: जात शीस न जात बिचारे गीत फरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे भूत भविख भवान की भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे तीर्थ नान दया दमदान ससंजम नेम अनेक विशेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसो विचार हजार क देख है सौद सपाह दुरंत दबा सुसाज सुना दुर जान दलेंगे तोर रीन मरोर मवासन माते मतंग न मान बलेंगे वीर पार बड़े बरियार अवचार है सार की तार बिछैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सबादन ही चकचार लवैया दानव देव फनिंद नसाचर पूत पवेख भवान जपेंगे प्रतापन बाढ़ जे जात तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसाद
1: फिर जब सत्र सदे अभिलोक जपेंगे
0: मान रविंद्र गजेंद्र निराधप जान त्रिलोक का राज करेंगे
1: स्नान अनेक साध बनाएंगे
0: महेश्वर विष्ण सचिव आंध फेज मफास परेंगे
1: फेर न दे तरेंगे
0: कहां पयो जो दो लूचन मूंद कै बैठ रहे हो पक ध्यान लगायो
1: साथ समुद्र लोग
0: बास कियो बिखिया सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो
1: साज को सुले हो सब है प्रेम की हो तेरी प्राम पायो
0: काहुले पाहन पूज तरियो सिर काहुले

0: सेवक सिख हमारे
1: तारिये मारिये
0: आप हांदे मुझे वरिये
1: मरण काल का त्रास न वरिये
0: हुजू सदा हमारे पच्छा।

0: रहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रहे
1: साचा नाम मेरा आधार
0: साचा नाम आधार मेरा जे भुखा सब गवाईया
1: प्रसाद सुख बने आए वसे जे निचा सब पुजारिया
0: सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिस ते है बढ़ियाया
1: नानक सो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार
0: वाजे पंच सब तत कर सपाके
2: कर सपाके शब्द वाजे।

0: कृष्णा बहुत नाही बोलना
1: खन्या तिखी वारो निखी एक माल चारा
0: गुर प्रसादी जिन्हें आप तजहर वासना समाने
1: नार चार भगता जुगो जुग निराली
0: जे तू चलाहे ते चले स्वामी होर क्या जाना करन तेरे
1: जे तू चलाहे जिन्ना मार गाव है
0: कर कृपा जन नाम लाहे से हर सदा ते आवे
1: विष्णु कथा सुनाया भई से गुरुद्वारे सुख पावे
0: कह नानक सच्चे साहे ज्यो पावे ते वे चलावे
2: हे सोहेला शब्द सुहावा
0: पवित होए गुरमुख जिनी ते आया
1: पवित माता का डाक तांग सहज सो पवित संगत सवाईया
0: कहंदे पवित सुनते पवित से पवित जिनी मन वसाया।

0: नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा लिव जाए।
1: जियो मरले बारो न मलारो, बार मर जियो मर इतनी जन्म चुए हारिया।
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मन मनो वसारिया,
1: वेदा मैं अनाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बितालिया।
0: कह नानक जिन सच तजै कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल,
0: बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी।
1: कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सच सुहाणी।
0: जनम रतन जिनी कटिया पले से वंजारे,
1: कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे जिन नाले।
0: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे,
1: होवे ता सन्मुख सिख होई जियो रहे गुर नाले।
0: गुर के चन हृदय त्याय अंतर आत्मे संभाले,
1: आप सहज सदा रहे पर न गुर बिन अवर न जाने कोई।
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए,
1: जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सत
0: मुक्त न होर तै कोई पिछे भविख्या जाए।
1: अनेक जुनी परमावे सचमुख मुक्त न पाए,
0: फिर मुक्त पाए लाग चन्नी सतगुरु सब सुनाए।
1: कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए।
0: सतगुरु के बिहारियो गावो सच्ची बाणी,
1: बाणी ता गावो गुरु के रे बाणी असर बाणी।
0: जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी,
1: पीवो अमृत सदा रहो रहो सार पाणी।
0: कह नानक सदा गावो यो सच्ची बाणी,
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है
0: बाणी। तक कच्ची सतगुरु बाजे होर कच्ची बाणी,
1: सच्चे कच्चे कच्ची आप वखाणी।
0: हर नित करे रसना कहे कछु न जानी,
1: जिन का हिरलिया माया बोलन है रवाणी।
0: कह नानक सतगुरु बाजे होर कच्ची बाणी,
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ा।
0: शब्द रतन जित मन लागे एया हुआ समा,
1: शब्द से

सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरप्रसाद जप आद सच जिगार सच है पी सच नानक होशी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरप्रसाद जप सच है पी सच नानक होशी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरप्रसाद जप आल सच जुगाद सच है पी सच नानक होशी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होशी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होशी भी सच धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सगल द्वार को छाड़ कै गहो त्योहार ओ द्वार बाहें गह की लाज अस गो

0: नानक पुनः चरण करत नहीं तरह।
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: गुरुमुख नाम जपो मन मेरे।
1: नानक पावो सुख मेरे।
0: सर्व श्रेष्ठ को राजा।

0: मिथ्या तन तन कुटुम सुभाया
1: मिथ्या हमे ममता माया
0: मिथ्या राजो तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ स्त्रिय सर्वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया खेप हस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह विमान
1: मिथ्या आपस ऊपर कर्तव्य मान
0: अस्त